से लाशदश्त में पामाल कर दिया। अरे पहचानू किस तरह से बदन से सर जुदा। अरे क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से

अरे जो तीर सीने में वो पुष्ट से निकल आए, अरे निकल के पहलू से सब बरछियों के फल आए।

बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन मैं फिर इन आँखों को ढाऊँ सितम ये क्या है जरूर

करू गर्दन पे चल रही है छुरी, छुरी पकड़ के ये चिल्लाती है कोई बीबी, नसीब हकर मेरे बच्चे को मैं दुआ दूंगी, हाय नसीब हकर मैं

खून। जानते हैं सबसे पहला जुमला क्या कहा? कहा कि मेरे चचा अब्बास कहाँ है? मेरे मौला ने कहा अब्बास शहीद हो गए। पूछा अली अकबर कहाँ है? कहा वो शहीद हो गए। एक एक पूछते रहे। हुसैन ने कहा

Koinabaja! Koinabaja! चौथे इमाम को जोश आ गया, कहा फूफी अम्मा मदद कीजिए, गश की आलम में थे, कहा नैजा लाए, कहा क्या कर रहे हो, कहा कहा ना आपने क्या आप और मेरे अलावा कोई नहीं बचा तो मैं आपके दिफा के लिए चल रहा हूं। हाथों को जोड़ के कहूंगा चो इमाम सज्जाद, ये करबला की मंजिल है, आपको कूफा और शाम की मंजिलें गुजारनी है। हार बाबे अजा वो मंजिल आई कि हुसैन ने तमाम महले हरम को खवातीन को खेमे में जमा किया, सब विदाई कर रहे हैं, बहने लिपट रही है, अरबाब अजा वो मंजिल आई कि हुसैन निकलना चाहते हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चे पैरों से लिपट गए, बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो बाबा। हाँ हुसैन चले, अरबाब अजा हुसैन की गुर्बत को महसूस करे, हजारों का लश्कर हुसैन तन्हा, पीछे अहले हरम, हुसैन आगे बढ़े। महमूद गरीबी कहते हैं कि हुसैन थोड़ा आगे बढ़े, थक गए थे बहुत, एक बार हुसैन रुके, अपनी आस्तीन को ऐसे लिया, थकन की वजह से अपने पसीने और खून को ऐसे, हुसैन आगे बढ़े, क्या हमला किया, हमला करते करते कहते तुमने मुस्लिम को मार दिया, तुमने हबीब को मार दिया, एक बार हमला करके कहते अरे तुमने मेरे अब्बास को मार। हुसैन हमला कर रहे हैं, एक मंजिल आई कि एक मलून ने छुप के तीर चलाया, तीर चला हुसैन की पेशानी, तीर हड्डी में पैवस्त हो गया। खून निकल रहा है, आंखों में खून आ गया, अरबाब अजा हुसैन ने हाथों को बढ़ाया, तीर को पकड़ के निकाला, खून का फव्वारा निकला, दाढ़ी खून से सफेद हो, खून से रंगीन हो गई। अरबाब अजा हुसैन इब्ने अली ने आंखों में खून जा रहा था तो चाह जीरा को हटा के एक कपड़ा निकालना चाह रहे थे ताकि चेहरा पोंछ ले, जैसे ही जीरा हटी हुरमुला ने तीर टागा, अरबाब अजा ये तीर आया सीने हुसैन पे, पायबस्त हो गया। अरबाब अजा अब दुश्मन ने घेरना शुरू किया, हुसैन इब्ने अली घोड़े पर संभलना चाहते थे, संभल ना सके, अपने हाथों को घोड़े की गर्दन में डाल दिया, दुलदुल जो था वो इमाम का चाहने वाला था, दुलदुल ने अपने दोनों पैरों को दबा दिया, फिर पीछे दोनों पैरों को दबाया ताकि हुसैन घोड़े से गिर ना पाए। हार बाबे अजा हुसैन दोनों हाथ थे।

0: थी, मुंह के बल गिर जाती थी, फिर उठती थी, फिर गिर जाती थी। शिमर खंजर को रोक ले, अभी प्यासा है हुसैन। वो मंजिल आई कि शिमर ने चाहा हुसैन को जिब करे, उससे पहले हुसैन के सामने पानी लाता है, पानी लाता खुदा गुरबत हुसैन पानी ला के कहता है, हुसैन बहुत प्यासे हो ना, बहुत प्यासे हो ना हुसैन, पानी लाता है और ऐसे उंडेल देता है। और बाबे अजा चिढ़ा के कहता है, अली के हाथ पे हौज़े कौसर में पी लेना, खंजर बड़ा। अरबाबे अजा चौथे इमाम कहते हैं कि जब जानवर को भी जिब किया जाता है तो पहले पानी दिया जाता है, लेकिन हाय हुसैन कोते ललचाना, प्यासा जिब किया गया। शिमर जब सीने पे बैठा था, मौला ने कहा चेहरे से नकाब हटा, चेहरे से नकाब हटाया तो इमाम ने कहा, तू ही वो मलून है जिसके चेहरे पे बीमारी होगी। शिमर को गुस्सा आया, शिमर सीने से हटा, इमाम पीठ के बल सोए थे, इमाम को पलटा दिया। अब इमाम का सर हाथों में है, पुश्ते गर्दन है, अल्लाहु अकबर।
1: या हुसैन Yosin. Yosin. Yosin.

जुम ले सुनना, लेकिन मुझे जाना आगे। भाई ये वाकया मक्के का है। रसूल ने हिजरत की, मक्के से सफर इख्तियार किया, मक्के का जमाना गुजर गया, रसूल ने हिजरत की, मदीने आए। हिजरत का पहला साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, तीसरा साल गुजरा, हिजरत का चौथा साल आया। नबी अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमाए और शमे रिसालत के परवाने नबी को घेरे हुए बैठे कि इतने में मस्जिद के दरवाजे से अली दाखिल हुए और कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम हो। और वही अली ने चीख के कहा कि या रसूल अल्लाह आज मैं बहुत परेशान हूँ, आज आप मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह मेरी परेशानी को दूर करे। आज अली के लिए रसूल दुआ करेंगे। और एक मरतबा रसूल ने हाथ को बुलंद किया, भाई तवज्जो रखना इस जुमले के लिए ज़हमत दी, अल्लाहुम्मा इरहम अला अली इब्न अबी तालिब बिहक्के अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार अली की परेशानियों को दूर कर, अली इब्न अबी तालिब की परेशानियों को दूर कर, बिहक्के अली।

इब्ने अबी तालिब, तुझे वास्ता अली इब्ने अबी तालिब का। बस ये सुनना था कि दिल की बात जबान पे आ गई। किसी ने पुकार के कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आखिर बात क्या है कि हमारा काम हो जब भी हक अली इब्ने अबी तालिब, और अली का काम हो जब भी वसीला अली का। तो एक मर्तबा रहमत ने जलाल के आलम में कहा कि अरे तुम अपनी बात करते हो, जब मुझे अपनी दुआ कबूल करवानी होती है जब भी मैं

हम ते बचा भी ले वे ज़ैनब फरियाद करता रहा गोरो नाटा पोथी हुसैन न लाशा पा महल थई गयो अजादारो एम नहीं कहता एम नहीं कहता लाशो जे छे ना बे घोरो कफन पेरो हतो नहीं नहीं लाशो क्या हतो ई बदन सलामत होय तो लाशा केवाई ने गलो भी कापी नाखवा मां आयो आंगरीओ भी कापी नाखवा मां आईवी फकत वीती माते एनी ऊपर 10 घोरे सवार दोरवा मां आयो एम नहीं कहता हुसैन का लाशा बेघोरो कफन जलती जमीन पर रह गया लाशा नहीं अरे लाशों के टुकड़े रह गए शामे गरीब अजादारो जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसुम ने कहे छे बहन बहन मक्तल मा जावा पहला भाई अमोने बच्चा हवाले कही रहा था चलो बच्चाओ ने आ दोरा दोरी नी अंदर बच्चाओ अन्या हुआ चाहिला गया छे चलो बच्चा ने आपरे भेगा करे अजादारो बच्चाओ नी तलाश नी अंदर बीबीओ गई मक्तल मानी कह रहा त्यां जाता जाता अल्लामा हाजी नाजी लखे छे के जनाबे ज़ैनब अने उम्मे कुलसुम जोया बे बच्चा पोताना हाथ एक बीजाना गर्दन मां राखी एक तरफ पैरा छे जनाबे ज़ैनब के छे बहन उम्मे कुलसुम आहिस्ता आहिस्ता उठार जो बिचारा थाकी ने सुई गया छे डरी ने सुई गया छे अजादारो जेम बीबीओ आईवा ना सू जोए छे बच्चा ना शरीर ऊपर गोरो ना टापो ना निशान सवार थी हुसैन लाशा उठारता हवे हुसैन नी बहनो लाशा उठावी रही छे पछी जोए छे सकीना नथी देखाता रात ना अंधारा मा ज़ैनब उम्मे कुलसुम सकीना नी तलाश मा निकरे छे सकीना सकीना सकीना सकीना कोई जवाब नथी मलतो अजादारो फुरात तरफ गया अल्लामा रशीद तुराबी पढ़ता हता फुरात ना किनारे पहुंची अने ज़ैनबे आवाज बुलंद करी अब्बा सकीना तुम्हारी पास तो नथी अजादारो अटला मा बीबी नी नजर पड़ी एक सिपाही पोताना घोरा ने पानी पीवरावी ने पाछो आवतो हतो ई सिपाही नी नजर पड़ी कौन तो के या शेख अमे सैयद जादियो छे शेख हमारी जे छे ना बे एक बच्ची मलती नथी जो तू ही बच्ची ने जोयो हो क्या तो मोटी मेहरबानी था से हमने बताओ ना हमारी बच्ची क्या छे आ लश्करी है लश्कर वालों जवाब आपे छे जो हूँ कोई बच्चा ने नथी जोयो पन हाँ अटलो हूँ कही शकू छू जा रे हूँ जे छे ना मारा सवार मारी सवारी घोरा ने पानी पीरावा माटे लिया वो ने अन्या मारो घोरो पानी नथी पीतो एना आँख मा आंसू छे कारण के एक बच्ची नी नजर रोवानी आवाज नशेब थी आवी रही छे ज़ैनब उम्मे कुलसुम ने जोया उम्मे कुलसुम ज़ैनब ने जोया जल्दी जल्दी बन्ने बहनों नशेब मा आईवा भाई हुसैन सकीना तुम्हारी पासे तो नथी आईवा आवाज आवी बहन आहिस्ता बोलो अरे सकीना मारी पासे आराम सकीना उठो उठो फूफी की जान उठो आवी रीते कोई घर मुकीने जंगल में ना आवे तो के फूफी अम्मा मारा बाबा भी तो यहां सुई रहा छे तो के सकीना तारा बाबा ने तू ओरखी केम करता शरीर ऊपर माथो भी नथी गलो कपाई गयो छे आ जालिमो लिबास भी उतारी लीधा छे शरीर आखो लोई थी लोहान छे तू के फूफी अम्मा जारे खेमा मा आग लाग

0: भाई हुसैन तमने अलतश अलतश कहता दुनिया में चाहला गया तमने एक बूंद पानी ना देवा भाई वो भाई जो दुश्मन तरफ थी तमारी सभी लाइवी छे जोजे हुर ने कहे छे तमें जाओ आबी ले जाओ अमे कोई तरस्या नथी अमारी प्यास बुझाओ माटे अमारा आंसू छे भूख माटे अमारो जे छे ने गम काफी छे जोजे हुर कहे छे बीबी बीबी तमारो गुस्सो नाराजगी एनी जगह पर हक छे पन बीबी आ बचाओ बचाओ ने थोरो पानी पिलाओ त्रण दिवस ना भूखा तरस्या हलाक ना थई जाय ओलमा बयान करे छे ज़ैनब ने याद आवी भाई वसीयत करी गया हता ज़ैनब पानी मले तो पहला मारी सकीना ने पिराव जो अब्बास ना वायदा ने पूरा कर जो बहनों में कुलसुम आवो कूजा उठावो बच्चाओं ने जल्दी थी पानी पिलावो ज़ैनब आव्या उठो सकीना तुके जी फूफी अम्मा तुके पानी पियो घबराई ने कहे छे पानी आवी क्यों हूं तो एना हाथे थी पानी पीस जे पानी ले आई वो छे कहे छे सकीना पानी चचा अब्बास नथी ले आई वा दुश्मन तरफ आईवा छे तो कहे कि नहीं मने पानी नथी पियो मु तरसी नथी जारे जनाबे ज़ैनब इसरार कहरा ना तो जनाबे ज़ैनब इसरार कहरा तो सकीना सवाल करे छे फूफी अम्मा मने शा माटे पहला पीराओ छो तो के बेटा तू सौथी नानी छो सकीना कुंजो लीदा पानी नो मक्तल तरफ जावा लाएगा तो के बेटा सकीना क्या जाई रहिया छो तो के फूफी अम्मा तमे किदा ना जे सौथी नानो हसे पेला ही पानी पीसे मारा थी नानो मारो भाई अलियासा
1: Aishi ayunim shab shame gharibanas Aishi ayunim shab shame gharibanas jisme husain uryan andar biyabanas aishi ayuni

बीबी कहता है, बीबी कहती है हम अहले बैत से दूर रहना। आए मजलूमियत सकीना, अरबाब अज़ा चादर से आग बुझाई गई, अब गोशवारे जीने जा रहे हैं। अरबाब अज़ा तसव्वुर करे, एक आलिम कहते हैं कि सकीना के दादा अली हैं जिन्होंने रुकू में अंगूठी सदके में दे दी, दादी फातिमा है, फातिमा ने खुद भूख के आलम में रिफ्तार उठा के दे दिया। अरे ये अहले बैत के घराना है, मांग लिया होता तो गोशवारे दे देते, छीनने की जरूरत क्या। आर बाबे अज़ा, बस ये अफरा तफरी का माहौल है, लूटा जा रहा है, खेमों में अशकिया दाखिल हो गई। हार बाबे अज़ा, ज़ैनबों में कुलसूम ने थोड़े देर के बाद बच्चों को गिना, देखा कि कुछ बच्चे कम हैं, बच्चों को जमा करने लगे। थोड़ा दूर पहुंचे कि क्या देखा, दो बच्चे बाहों में बाहें डाले मैदाने करबला में लेटे हैं। ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने सोचा थके हुए हैं, तीन दिन के भूखे प्यासे हैं, शायद आराम कर रहे होंगे। लेकिन नजदीक गए तो क्या देखा, जिस्म पे टापों के निशान।

की अमानत कहाँ है? अरे ढूंढना शुरू किया तो क्या देखा, सकीना एक लाशे से लिपटे रो रही है। सकीना एक लाशे से लिपटी रो रही है, लेकिन अरबाब अज़ा वो लाशे का सर न था। सकीना से पूछा, कैसे पहचाना बाबा का लाशा है? सुन सकोगे? अरे लाशा पहचाना जाता है या सर से? हुसैन का सर तन से जुदा था या लाशा

सजा दाऊद इब्ने तरम्मा, ए असद कल्बी, ए अब्दुल्लाह इब्ने अकील, ए अब्बास इब्ने अली, ए मेरे पुरखलूस निडर साथियों, ए जंग के मैदान के जरी दिलेरो, मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ मगर तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ लेकिन क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे? क्या तुम गहरी नींद सो चुके हो कि मैं तुम्हारी बेदारी की उम्मीद रखूँ? या तुम्हारे दिलों से तुम्हारे इमाम की मोहब्बत ख़त्म हो गई है जब ही तुम उसकी मदद नहीं कर रहे? उठो, नींद से जागो। ख़ानदान पैगंबर की ये ख़वातीन तुम्हारे बग़ैर लाचार हो चुकी हैं और हरम रसूल अल्लाह का इन हकीर तुगियान गरों के सामने दिफा करने वाला कोई नहीं। खुदा की कसम, मौत ने तुम्हें ज़मीं बोस कर दिया और इस बेवफा ज़माने ने तुम्हारे साथ भी वफा नहीं की, वगरना तुम मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहने में हरगिज़ कोताही नहीं करते और मेरी मदद से दस्तबरदार नहीं होते। आगाह रहो कि हम तुम्हारे फ़िराक में सोगवार हैं और बहुत जल्द तुमसे मिलने वाले हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सुनना था कि अहले हरम में गिरियाओ जारी शुरू हो गई। बीमार लेकिन मुसम्मम इरादा लिए हज़रत सज्जाद एक हाथ से अपने असा का सहारा लेते हुए और दूसरे हाथ में तलवार घसीटते हुए बाहर आए और इमाम आली मुकाम से अर्ज़ किया, बाबा जान मुझे भी मैदान में जाने का इज़्न दें। इमाम आली मुकाम ने बहन उम्मे कुलसूम को इशारा किया और फरमाया, मेरे बेटे सज्जाद को वापस खैमे में ले जाओ ताकि खुदा की ज़मीन फरजंदे मोहम्मद से खाली ना हो जाए। इमाम सज्जाद खैमे में वापस आए और औरतों बच्चों और बच्चियों ने इमाम के गिर्द घेरा डाल दिया। इमाम अहले हरम को अपनी शहादत के बाद आदा की जानिब से जोरो जफा पर सब्र व तहम्मुल की तलकीन करते रहे। उसके बाद फरमाया, मेरे लिए लिबास से कोहना ले आओ ताकि कोई उसे गनीमत के तौर पर लूटने की कोशिश ना करे। क्या मालूम मेरी शहादत के बाद मेरे तन से लिबास तक उतार दें, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि लश्कर आदा मेरे मरने के बाद मेरे लिबास पर भी रहम नहीं करेगा। लिबास से कोहना लाया गया। इमाम ने खुद भी उस लिबास को चंद जगहों से पारा किया ताकि उसे ताराज करने की अहमियत ही बाकी ना रहे। इसी दौरान इमाम आली मुकाम की साहबजादी सकीना ने गिरिया करना शुरू कर दिया। इमाम ने सकीना को सीने से लगाया और फरमाया, मेरी बेटी सकीना, जान लो कि मेरी शहादत के बाद तुम्हारा गिरिया बहुत तूलानी हो जाएगा। अभी जब तक जिंदा हूँ तो अपने आंसुओं से मेरे दिल को पारा पारा मत करो। ऐ मेरी बेहतरीन बेटी, जब मैं शहीद होऊंगा तो तुम मेरा गम मनाने के लिए सबसे ज़्यादा सजावार हो। चंद लम्हों बाद इमाम आली मुकाम ने मैदान की जानिब बढ़ना शुरू किया। अचानक कुछ लम्हों के लिए रुके और फरमाने लगे, ऐ ज़ैनब, ऐ उम्मे कुलसूम, ऐ सकीना, ऐ अहले हरम, आप सबको अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ कि अल्लाह जल्ले शानहु इस तमाम वाक़े का शाहिद है। बाली सकीना खैमे से दौड़ती हुई बाहर निकली और फरियाद करने लगी, ऐ बाबा, क्या मरने का इरादा कर लिया है? इमाम ने इंतहाई गमजदा हालत में फरमाया, जिसका कोई यारो मददगार ना हो वो मौत का इरादा क्यों करना करे? बाली सकीना बोली, बाबा जान, अगर इरादा कर ही लिया है तो हमें हमारे जद के हरम में पहुंचा दें। इमाम आली मुकाम ने अफसोस से सर हिलाकर कहा, अफसोस कि ये कौम हमें नहीं जाने देगी। उमर इब्न साद के लश्कर के मद्दे मुकाबल खड़े थे। इमाम ने फरमाया, वाए हो तुम लोगों पर, मुझसे क्यों जंग कर रहे हो? क्या मैंने किसी सुन्नत को तब्दील कर दिया है या शरीयत को दिगरगू कर दिया है? क्या कोई जुर्म अंजाम दिया है या किसी का हक खाया है? इमाम ने उन जाहिलों पर अपनी हुज्जत तमाम कर दी थी लेकिन कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। इमाम ने शजाअत हैदरी दिखाते हुए दुश्मन को ललकारना शुरू किया और जो भी सामने आता गया वो इमाम आली मुकाम के वार से बच के ना जा सका। फिर इमाम ने उमर साद के लश्कर पर हमला कर दिया। अहले कूफा व शाम फरार करने लगे। इमाम रजस पढ़ने लगे, मौत शर्मसार जिंदगी से कहीं बेहतर है।
عمر سعد نے جب یہ دیکھا کہ جو کوئی بھی

0: बार, यानी इससे ज्यादा मरहला सख्त क्या होगा कि तपती धूप है, सहरा है, घर बार लुट चुका है, खेमे में बीबियां हैं और खंजर चलने को है, उस वक्त भी जिक्र खुदा हो रहा है, उस वक्त भी सजदा खुदा हो रहा है। तो इसका मतलब इमाम अली मकाम ने इस चीज़ को सबसे अहम जाना, इसलिए बार बार इस काम पर फोकस किया। ये जो हुसैन का और खुदा का रिश्ता है, ये थोड़ा हमें समझाइएगा।
1: देखिए, कोई भी काम, कोई भी मकसद, कोई भी मूवमेंट, वो अपने डेस्टिनेशन से ही पहचानी जाती है।
0: ठीक।
1: इमाम जो भी

0: हमें लग रहा है कि जैसे जैसे आपने बोला कि हमें लग रहा है कि ये मुश्किल आगे है,
1: हाँ।
0: तो इमाम कुछ और कर रहे हैं, नहीं, असल में हमें ये पता होना चाहिए कि इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा क्यों था, इमाम हुसैन का मकसद क्या था, इमाम हुसैन का असल मकसद दीन इलाही था।
1: अगर उस मुश्किल का सामना ना करना होता तो मदीना ही ना छोड़ते,
0: नहीं मदीना ही नहीं छोड़ते, उन्होंने खुद फरमाया कि मैं जो है वो बस दीन की खातिर और अपने जद यानी नाना की उम्मत की इस्लाह की खातिर निकल रहा हूँ। अब असल मकसद ही इस्लाह था, असल चाहे वो मैदान जंग हो, चाहे वो जो है वो आप एहराम छोड़ के चले जाएं, जो है वो हज के
1: हज को उम्रे से तब्दील कर दें,
0: असल हदफ दीन था, असल हदफ खुदा था। यानी जब खुदा की जिसको जितनी मारिफत होती है वो उसके लिए उतना ही आगे जाता है। हमें लगता है कि मसलन ये इतना मुश्किल काम में ये काम इतना असल काम ही वही था।
1: असल जिसको मैं समझ रहा हूँ कि वो असल में तो वही काम ज्यादा,
0: असल वही काम, असल के लिए तो निकले कुरान की बका थी, असल नमाज को कायम करना था। यही तो इमाम हुसैन बताना चाह रहे हैं कि देखो ये सब मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये रात मैंने किस लिए मांगी, ये रात मैंने इसलिए नहीं मांगी कि मुझे एक रात मिल जाए मैं इंतज़ार, ना, यही उन्होंने कहा था, पैगाम जो भिजवाया था कि मुझे एक रात और चाहिए, किस लिए, नमाज के लिए और कुरान की तिलावत के लिए। यानी सुबह आपको पता है कि सुबह जो होने वाला
1: होना है,
0: हाँ। लेकिन वो जो होने वाला है वो लॉस्ट थोड़ी है। असल में हम ये समझते हैं कि जो अल्लाह की राह में मारा, कुरान कह रहा है असल तुम गुमान ना करो, गुमान ना करो, असल वहाँ मौत नहीं है, असल
1: इसको मैं मुश्किल समझ रहा हूँ, मुश्किल है ही नहीं,
0: नुकसान नहीं है, असल वो तो खुदा खुद कहता है कि मुझे चंद कतरे सबसे ज्यादा पसंद है, उनमें से एक शहीद के खून का कतरा है। अब ये जिस काम के लिए, और ये काम सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए या उस खित्ते के लिए फिजिकल नहीं था
1: कि एक सर्जरी में कर्बला में एक ट्रेजेडी हो गई, खत्म हो गया,
0: नहीं नहीं, ये जो इमाम अली मकाम ने, इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने जो काम किया, ये बशरियत की बकात के लिए था। यानी ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन जो है कि दीन पनाज, यानी
1: हाँ,
0: ये
1: हाँ।
0: जो दीन है ये इमाम हुसैन ने क्यों बचाया, असल में इमाम हुसैन ही बचा सकते थे, क्योंकि पीछे से जिस घर के अंदर दीन आया और जिस घर में, वही दीन की खातिर ये कुर्बानी दे सके, और कोई नहीं दे सकता था। और कुर्बानी भी ऐसी कि जो देखें, कुर्बानियाँ और भी हुई हैं तारीख में, और भी वाक़े हुए ट्रेजेडी, लेकिन क्यों करबला जो है वो आज तक वैसे ही है, ना कलम थक रहे हैं, ना जबानें थक रही हैं, न टीवी के प्रोग्राम ख़त्म हो रहे हैं, असल कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो रही। इसमें मेरा आपका कोई कमाल नहीं है कि सब मैं बड़ा अच्छा हूँ तो मैं ना, असल में ये इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी उसके असरात इतने थे कि ये कयामत तक कौमों को जिंदा रखा जाएगा।
1: क्या बात है।
0: और ये पैगाम जो कुरान, क्योंकि इमाम हुसैन ने अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, अपनी एक पोस्ट के लिए नहीं किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए किया था कि खुदा तू राज़ी है तो मैं अपना बच्चा भी दे दूंगा, तू राज़ी है तो मैं अपने घर बार को असीर भी बना लूँगा। असल दीन इम्पोर्टेंट है, आप देखें ये तो खुदा का असूल है, खुदा कहता है कि तुम मेरा जिक्र करो,
1: मैं तुम्हारा
0: जिक्र करूँगा। अब इमाम हुसैन ने शब आशूरा खुदा का जिक्र किया है,
1: कुरान का जिक्र बाकी रह गया,
0: उन्हीं का जिक्र, यानी खैमों से कुरान की तिलावतों की आवाज़ें आ रही हैं, कोई इबादत में खड़ा हुआ है। आप सोचें ना, जिसको पता हो कि सुबह उसके बदन के टुकड़े होने वाले हैं और वो सजदे के अंदर है, तो उसका सजदा कैसा सजदा होगा। मुस्लिम इब्ने औसजा जो एक सहाबी हैं, इमाम हुसैन के साथ हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे सहाबी के दोस्त भी हैं, रात को उनके चेहरे पर तबस्सुम है,
1: हाँ।
0: शब आशूरा, तो हबीब इब्ने मज़ाहिर पूछते हैं कि आज मतलब ये रात ऐसी नहीं है कि आप मतलब तबस्सुम आपके चेहरे पर आए, यानी मुस्कुराहट सी आए, तो कहा कि नहीं, मेरी तो मुस्कुराहट इस वजह से है कि मेरे और खुदा की मुलाकात में चंद घंटों का फासला रह गया है। यानी जब ये विजन हो तो लॉस्ट नहीं है,
1: तो वो तो अचीवमेंट थी ना वे,
0: हाँ, वो कोई... असल तो ये है कि मैं खुदा तू राजी, रजन बे कज़ाई जो इमाम हुसैन अलैहि सलाम क्यों कह रहे हैं, असल तू राजी रहे परवरदिगार। यहाँ हमें खुदा को समझना पड़ेगा, यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह समझना पड़ेगा।
1: अक्रॉस द बोर्ड था करबला का शुहदा, मतलब मैंने ये सुना उलमा कराम से कि अगर इमाम हसन के बेटे हैं जनाब कासिम और जब शब आशूर इमाम आली मकाम मकालमा फरवा रहे हैं, तो मैंने ये सुना उलमा से कि जिसका मफहूम ये है कि कल जब कहा है कि बेटा तुम्हारे साथ भी कल ये होगा, तो सवाल आगे ये नहीं किया कि कैसे होगा, क्यों होगा, तकलीफ तो नहीं होगी, सवाल ये कि हम हक में हैं या नहीं है, तो कहा बेटा बेशक हक में, تو کہا پھر کیا پرواہ ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے موت ہم پہ جا پڑے. یعنی کربلا کے بچے مائیں سب سیم پیج پر ہیں اس حوالے سے جو آپ, جیسے امام علی مقام کی کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے,

0: सबका माइंडसेट यही है।
1: ये जुमला जनाबे अली अकबर का है कि जो उन्होंने कहा था कि बाबा हम हक पे हैं कि नहीं है। एक जवान तो उनका नहीं बेटा हम हक पर हैं, तो कहा बाबा क्या फर्क पड़ता है कि हम मौत पे जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े। देखिए ये मारिफत है, ये जानते हैं कि हुम फिया खालिदून जो कुरान कह रहा है, असल जिंदगी वो है, असल हयात वो है। ये तो इम्तिहान है दुनिया
0: कि राजी बा रजा
1: दुनिया, देखिए दुनिया जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दुनिया मजरा उल आखरा, दुनिया आखरत की खेती है, जो तुम वो बीज डालोगे वो बोगे। अब इससे अच्छा क्या बीज इंसान बोए कि जब जिक्र हुसैन आए तो लोग जो हैं वो अल्लाह की तरफ हों। आप देखें ना करोड़ों का मजमा अरफे में, आशूरा में और अरबईन में कहाँ जाता है, इमाम हुसैन की तरफ जाता है।
0: इमाम अरबईन में तो अजीब मंजर होता है, जब बच्चे हम टेलीविजन में नाज़िर देते हैं तो बच्चे बूढ़े औरतें बुजुर्ग कई कई
1: सबकी निगाहें क्या है,
0: चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं,
1: सबकी निगाहें इमाम हुसैन की तरफ है और इमाम हुसैन की निगाह परवरदिगार की।
0: वाह वाह वाह,
1: यानी इमाम हुसैन ने सबको ऊपर लेके खुदा की तरफ लेके गए हैं। यानी जो भी इमाम हुसैन तक पहुंचा है वो असल में तौहीद के लिए आया है। जब जहां भी इमाम हुसैन को देखता है या नमाज है या इबादत है, हत्ता जब सर नेजे पर है तो सूरह काफ की जो कुरान की आयत है उसकी तिलावत की जा रही है। यानी किसी लम्हे इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि इधर वहाँ उधर, असल वही है।
0: So, यानी क्या मैं ये कहूँ तो ठीक होगा कि हर चीज़ को चेक करने के लिए कोई लिटमस टेस्ट होते हैं ना, कि मैं पता नहीं मैं काम सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो उसके लिए देखना होगा कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मुझे अगर इमाम आली मकाम से अपनी कुर्बत को चेक करना है तो मुझे ये इसके लिए वन ऑफ मैनी क्राइटेरियाज ये भी है, क्या ये ठीक है अगर मैं कहूँ कि मुझे हुसैन खुदा से कितना करीब कर रहा है नहीं कर रहा, ये ठीक है क्या ना?
1: जब आप देखें इमाम होता ही वो ये जिसकी अतात की जाती है। अगर मैं इमाम की अतात करूं तो फिर इमाम की अतात तो यही है कि दुश्मन की फौज भी आई है और पानी नहीं है तो उसको पानी पिलाओ। बेटा जवान शहीद हो गया है लेकिन फिर भी इमाम हुसैन खड़े हुए हैं और सामने वाली फौज को हिदायत दे रहे हैं कि अभी भी अगर तुम माफ़ी या तौबा कर लो खुदा की बारगाह में तो मैं तुम्हें, यानी किस लिए? हमारा तो ज़रा सा कोई ज़िंदगी में मुझे कुछ कह दे,
0: हम कहते हैं याद रहेगा, ये
1: याद रहेगा,
0: मैं स्कोर सेटल करूंगा,
1: कभी नहीं छोड़ूंगा।
0: हाँ, मौका मेरा टाइम आना
1: अपनी, हमारा तो खैर कोई मुकायसा भी नहीं है, हम तो खाकों के अंदर खाक में भी दफन हो जाएं तो भी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें फॉलो इन्हीं को करना है ना। सीरत से सीरत हमारे लिए इमाम की, और इमाम जो है वो कौन है? नवासे रसूल है, असहाबी रसूल है, जिसने रसूल को देखा जिसने रसूल के साथ सुने वो साहबी रसूल भी है, नवासे रसूल भी है। अब वो हस्ती हमें यही बता रही है कि देखो ठीक है ये सब हो गया लेकिन ये भी खुदा ही के लिए था, लेकिन अगर अभी तुम खुदा की तरफ आ जाते हो
0: तो बस फिर
1: मैं तुम्हें छोड़ दूँ,
0: जात का तो झगड़ा ही नहीं है,
1: नहीं है, असल फना फिल्ला है। इमाम हुसैन यही तो वजह है, आप देखें ना कि सब आयतुल्ला काजी तबतबाई रजवानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं रहमत मौसूला जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। यानी इमाम हुसैन के दरवाजे, और इमाम हुसैन का दरवाज़ा ऐसा है कि ना वो फ़िरका देख रहा है, ना वो मज़हब देख रहा है, ना वो स्कूल ऑफ थॉट देख रहा है। इमाम हुसैन में आपको पता है, मतलब आप देखते भी हैं, मतलब हिंदू भी जा रहे हैं,
0: जी जी जी,
1: ईसाई भी जा रहे हैं, क्रिश्चियन भी जा रहे हैं, हर क्यों जा रहे हैं, मतलब क्या है इमाम हुसैन?
0: वो भी देखा कि सब एक दूसरे का जिस तरह ख्याल कर रहे होते हैं, अगेन वो अरबईन के दिनों में हमने देखा जैसे पानी पिला रहे होते हैं, तो वो फिरका तो दूर की बात, मजहब से भी बहुत ऊपर है ये मामला।
1: कोई चीज पूछता है कि आप कौन से मुल्क से हैं, आपकी जबान क्या है, आप कहाँ से आए हैं, कोई नहीं पूछता, सिर्फ एक टैग है जवारे इमाम हुसैन,
0: खत्म
1: हो गया। यानी इमाम हुसैन जो है वो यजमाउना, वो अरबी के अंदर उन्होंने जो फ्रेज बनाया है ना, इमाम हुसैन लोगों को जोड़ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। ये अगर आप इस सिनेरियो में देखें तो वो छोटा सी जगह और थोड़े से लोग ने ऐसा काम किया है कि कयामत तक की बशरियत उस रास्ते पर चलती रहेगी।
0: क्या क्या,
1: और ये तौहीद था। अगर किसी ने अपनी ज़ात के लिए काम किया होता, किसी ने अपने मुल्क के लिए काम किया होता, किसी ने अपने ख़ानदान के लिए काम किया होता, ख़त्म हो चुका होता। खुदा भी उसी को जिंदा रखता है जिसने अपना कुछ खुदा के लिए दिया। मैं और आप भी कोई काम खुदा के लिए करेंगे, आप देखें फिर खुदा हमारे जिक्र को कैसे फैलाए।

0: जाएगा।
1: वाह वाह वाह।
0: और आपके सामने मिसाल
1: बट एज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री में हम देखते हैं तो ये बात ठीक है कि बहुत बड़े बड़े वाक़यात होते हैं तो उनका असर, कोई बड़ा वाक़या होता है तो उसका असर 5 साल रहता है, उससे बड़ा होता है तो 5 दिहाइयों तक उसका असर रहता है, 70 साल तक रह जाता है, 100। लेकिन ये तो आज तक जो रेलिवेंट है वो इसलिए कि उन्होंने अपनी जात के लिए किया ही नहीं, अल्लाह के लिए किया, तो फिर अल्लाह ताला ने वो जिक्र कायम रखा था।
0: हाँ। और वो चलता जा रहा है और वो हर दौर के अंदर चीज़ जो है ना, तो यहाँ पर यही देखना है कि वो जो सजदा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो
1: हजार,
0: हाँ ना, अब इमाम हुसैन आखिरी टाइम पर उस सजदे को कर रहे हैं, यानी कोई चीज़ अपनी पर्सनैलिटी के लिए या अपनी ज़ात के लिए असल है ही नहीं, सब खुदा तेरे लिए है, बच्चा भी तूने दिया है, जवान भी तूने दिया है, भाई भी तूने दिया, हज़रत अब्बास जैसा तूने दिया है, वरना हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को अगर वो इजाज़त देते तो मतलब हज़रत अब्बास अकेले काफ़ी थे उनके लिए, लेकिन नहीं, मकसद इलाही यही है कि जो जितना है। अब यहाँ पर हमें भी अपनी ज़िंदगी को देखना पड़ेगा, अगर हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इस वाक़े से दर्स लेना चाहते हैं, दर्स तो पूरी ज़िंदगी दर्स है, कि हमारी ज़िंदगी में खुदा कितना है, हमारी मुश्किल जब आती है तो हम खुदा पर कितना डिपेंडेंट हैं और अपने वसाइल पे कितने डिपेंडेंट हैं, हमारा जब कुछ छीन जाए
1: जी,
0: या मतलब दुनिया में हादसा हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, हमारा सब्र का लेवल क्या है, गो के यकीनन हम उधर नहीं पहुंच सकते।
1: हाँ, सही सही है।
0: लेकिन हमें सीखना तो यही है, और यही देखें, हम कहते हैं ना खुदा कोई गम न दे सिवाए गमे हुसैन के, इसका मतलब क्या है, इसे बाकी गम कोई अहमियत नहीं रखते, असल गम हुसैन का है। जब आपका कोई दुनिया से चला भी जाता है मतलब, तो आप कहते हैं कि यार इमाम हुसैन का ही जिक्र कर दो, क्यों, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें इंटरनल बातिन की बका है, और वो बातिन की बका उसी से होती है कि जो अल्लाह का वली है उससे जुड़ जाओ, वरना कुछ नहीं है हमारे पास। हम चाहते हैं कि हम हर चीज़ को अटैच कर दें उस अल्लाह के वली से जिसने अपना सब कुछ खुदा के लिए कर दिया,
1: क्या कहना,
0: तो फिर हम भी उसी के साथ अटैच हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी भी जो है ना उसी तरह, फिर आपको ये नहीं होगा कि कट गया, तकलीफ़ें हो गई, कुछ हो गया। ऐसे लोग थे, वो वहाब ने कल्बी के जो क्रिश्चियन था, मुसलमान हुआ, नई नई शादी थी, जिसके सर को दुश्मन ने काट के इधर अहानत की, उसकी माँ ने सर को वापस दिया, कहा कि जो हम दे देते हैं वो वापस नहीं लेते, यानी ये क्या है ये? ये खुदा की तरफ इंसान बढ़े तो उसे पता चलेगा कि
1: क्या कहना। जज़ाकअल्लाह। हम इंशाल्लाह नाजी इसी डिस्कशन को हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे, मतलब बहुत सारी बातें आ रही जहन में, जनाब हज़रत वहाब ने कल भी का तस्करा किया और हमने उलमा कराम से जनाब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के वाक़यात सुने कि भाई मुझे अपने बच्चे बहुत अजीज़ हैं लेकिन जनाब ज़ैनब के बच्चों पर, मेरे बच्चे के, हमारी नस्लें कुर्बान, वो उनके बच्चे जाम शहादत नोश कर रहे हैं और वो अपने बच्चों की बात ही नहीं कर रही, वो भी सिर्फ इमाम अली मकाम की और उनके मकसद की बात करी। सो देर आर सो मेनी लेसन विच कैन बी डराइव, वो हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कल की नशस्त में भी। जैसे आज ये समझ में आया कि अगर इमाम अली मकाम, जिनसे हमारा ज़ाहिर है किसी भी दर्जे में कोई भी कंपैरिजन एक भी लम्हे के लिए हो ही नहीं सकता, जब वो अपनी ज़ात को फना करके सिर्फ खुदा की ज़ात को मुकदम रख रहे हैं, तो मेरे पास क्या रीज़न रह जाता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के एक भी लम्हे के लिए अपनी ज़ात को आगे रखूँ, या वो उन मौक़ों पर नमाज़ को नहीं छोड़े तो मेरे पास क्या रीज़न रह जाता है कि मैं किसी मौके पे छोड़ूँ। तो इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं इंशाल्लाह, वो हम कल की नशिस्त में समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मकसद इमाम आली मकाम इस उनवान से गोया ये हमारी 3 नशस्तें हैं इंशाल्लाह, जनाब क़िबला अल्लामा नुसरत बुखारी साहब के साथ। हम एक वक्फे के बाद हमारी आज की नशरियात जारी रहेगी और कल भी दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह।
2: निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा इस्माइल।
1: नशरियात हमारी जारी है बउनवान शान हुसैन, और हमारे साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मशहूर व मारूफ सना खां, नात खां, नोहा खां। अभी इन्होंने रमज़ान मुबारक में एक हमद बारी ताला पढ़ी जिसको सबने बहुत सराहा, हमने शान रमज़ान का हिस्सा ही बनाया उसको, और

0: के बाद सर आया तो उन्होंने वापस किया, देखिए हम एक दफ़ा खुदा की राह में जो कुर्बान करते हैं वापस नहीं रहते। अब इसको एक दर्जा और आगे बढ़ा दें तो ख़ुद जनाब जनाब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने, यानी उनके बच्चों पर हमारे बच्चे कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान, तो ज़ाहिर है जैनब के बच्चों से ज़्यादा हम किसके बच्चे हैं। तो अब वो क्या था कि जब वो अपने बच्चे भी जब उन्होंने कुर्बान कर दिए तो वहाँ भी हमने उलमाए कराम से सुना ये पढ़ा कि उन्होंने गोया प्राइमरी इम्पोर्टेंस अपने बच्चों के दुनिया से चले जाने को नहीं दी, उस पर उतनी बात नहीं की। उस वक्त भी वो इमाम आली मकाम और मकसद इमाम आली मकाम पर बात करती रहीं। ज़रा आप पर इस उनवान से फरमाइएगा फिर।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने फरमाया कि शब आशूरा शब गम है, और बात वही है कि हर तस्वीर को देखने के दो रुख हैं। एक रुख ये है कि खेमे में माँ अपने बच्चे को देख रही है कि कल ये बच्चा इस खेमे में नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ वही माँ उस बच्चे को तैयार कर रही है कि देखो बेटा कहीं देर ना कर देना, कि जो यानी अब हर अलग अलग रिश्ता है इमाम हुसैन से, बहन भी हैं और फैमिली की ख्वातीन भी हैं, सब कुछ है, लेकिन यही कहा कि देखो बेटा देर ना हो। यानी इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें हर खेमा सबकत लेना चाहता है। असाब के खेमों में जाएं तो वो बैठे हुए ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान हो जाएं, हम पहले जाएंगे। यानी आखिर क्या है कि हर कोई चाहता है मैं पहले
0: सबकत ले जाऊँ,
1: मैं पहले चला जाऊँ। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि जो चीज़ हासिल होनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: और वही चीज़ है कि जो बाकी रखेगी, वल तो सरुनल हयात दुनिया वला आखिरत खैरं वअबका, आखिरत बाकी रहेगी। इसका मतलब है कि ये जो काम करने जा रहे हैं ये आखिरत के लिए है ये, और ऐसा बाकी रखेगी कि ना सिर्फ वहाँ बाकी रखेगी बल्कि यहाँ भी बाकी रखेगी। ये हमारी सोच है कि हम अगर खुदा के लिए कुछ करें या आखिरत के लिए करें तो देखें जी दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा या दुनिया में ऐसा हो जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा और आपका नाम नहीं होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया है। जबकि ऐसा नहीं है, अगर खुदा के लिए काम करो, आखिरत के लिए काम करो, तो खुदा तुम्हारी दुनिया को भी बाकी रखेगा और खुदा तुम्हारी आखिरत को, तो आखिरत है। यहाँ पर खेमों के अंदर यही था कि कुरान बाकी रहेगा, नमाज बाकी रहेगी, बदन तो खाक में मिल जाए तो मिल जाए, मगर तुम्हारा वजूद, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी होइयत जिसे कहते हैं वो बाकी है। दुश्मन समझा शायद मैं बदन के टुकड़े कर दूंगा, मैं खाक में बिगड़ जाएंगे,
0: हाँ, हाँ।
1: कुछ नहीं का, लेकिन क्या चीज़ है आज सिर्फ हुसैन बोला जाए आंखें नम हो जाती हैं। यानी अल्लाह ने इन हरूफों के अंदर कायनात समेट दी है, पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, नाम लिया जाए, जबान का ना ताल्लुक है ना रंग का ताल्लुक। मैं अफ्रीका में गया हूँ, हाँ। जंगलात के अंदर जाकर मुहर्रम में हमारे दोस्त अहबाब हैं जो कि जाकर उन्हीं की जबान में स्वाइली के अंदर मजलिसें पढ़ते हैं, असन आप करो वाह हुसैन असम गिरिया करते हैं, रोते हैं, असम वो क्या है, इनको किसने बताया है, क्या चीज़ है। मेरा आपका कोई कमाल नहीं है, न मैं पूरा साल इतनी इबादत करता हूँ कि फर्श अज़ा पर बैठ सकूँ। तो ये है, और वो जो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यही है। देखें जब मकसद ये है तो वो शरीकतुल हुसैन है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शरीक है हर जगह। ये जो आपने फरमाया कि अपने बच्चे भी आ गए, हर वक्त जो भी बदन आया है वहाँ से,
0: सही है,
1: खैमा एक बड़ा जो था जिस पर आकर बदन रखे जाते थे, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पहले थी। क्यों? कि कहीं भाई को ये ना लगे कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, कहीं साथ नहीं। और जब अपने बच्चे आए हैं तो सर सजदे में रखा है कि खुदा तेरा शुक्र तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल किया। खूब देखें यहाँ पर वही है, मकसद क्या था। जब कूफा के दरबार में जब सब लुट गया और ये नेज़ों पर सर पहुँचे और पहली असारत कूफा के अंदर है, हाँ। असीर जो हुए वहाँ पर जब पूछा उस लईन शख्स ने के बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह से कि देखें खुदा ने ये कर दिया वो कर दिया,
0: हाँ, हाँ।
1: आपने क्या देखा, तो क्या जुमला बीबी ने फरमाया, माँ रहे तो इल्ला जमीला, मैंने जमाल के सिवा करबला में कुछ नहीं देखा। जमाल यानी खूबसूरती,

क्या कहना है, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। और अब उन्हीं इमाम आली मकाम की, उन्हीं इमाम हुसैन की आप ये मुसीबत सुनिए। मैंने अपने तौर पे जब भी कोई शहीद हो रहा होता था तो इमाम आली मकाम को पुकारता था और इमाम आली मकाम जाते थे उसके पास, उनके पास। लेकिन जिस अंदाज से इमाम आली मकाम जनाब अली अकबर के पास गए, वो एक बिल्कुल अलग ही अंदाज था। यहाँ तक मिलता है कि लाश अकबर पे शाह जब पहुँचे, दिल को हाथों से थाम कर बोले, तेरी फुरकत ने ए अली अकबर, आग दिल में मेरी

बाबा जान आपका सर जब मुझे जिंदा में मिला, खुद को ना रोक सकी जब्त मेरा टूट गया। बाबा जान दूर हुई, बाबा जान दूर हुई, अब मेरे सदमों की थकन आ गए आप बस अब चैन।

चीजों के जरिए से तुझ तक नहीं, दुनिया तो होती है ना कि मैंने अच्छा है, सुशानियों के जरिए से यानी आयाते इलाही गनी है, तू बेनियाज है कि मैं चीजों के उनका खालिक है। ये सब क्यों? क्योंकि सब फना हो जाएगा, उसमें अपने आप को फना कर दो। खुदावंद मुताल के लिए

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर की बहनें बेटियां हैं, शहीद हो गया है भूखा प्यासा, कोई बेरदा है आलम है, तो अब इस दिन से ज़्यादा ट्रैजिक दिन क्या होगा। मैं इब्तदान गुजारिश करूँगा और बहुत सारे पहलू हैं आज के दिन के। इमाम आली मकाम की एक बेटी थी जनाब सकीना कहते हैं, और आज भी उस रोज़े अंडरग्राउंड एक छोटी सी जगह पर जाकर है, जो वही कैद खाना था और फिर वही बस मुस्तकिल ठिकाना हो गया। तो अब मैं अपने तौर पे सोचता हूँ, ये कोई इसको किसी आलिम की बात की ऐसी से ना लीजिएगा एज अ लेमैन, कि जो जो जब जब शहीद होता गया, जिसकी बहुत ही तकलीफ़ ज़ाहिर है, लेकिन उसकी तकलीफ ज़ाहिर है जब मर्तबा शहादत पाया तो वो एक सिलसिला मुनक़ता हो गया। अब ये बच्ची है, बेटियों वाले सुन रहे हैं, तो ये जो जो करबला में जितना जितना ज़िंदा रहा उसकी तकलीफ भी तब तक तक बरकरार रही। तो अब नहीं मालूम कि इस बच्ची ने क्या क्या देखा है। मैं इब्तदान गुजारिश करूँगा कि ये जब कि कोई ऐसा मंदिर होगा कि जब उस बेटी ने अपने बाप के पास गई होंगी तो बच्चे होते हैं, अपने तौर पे कुछ बताया होगा ना कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। हम घर पे आते तो बच्चे बता रहे होते ना, बाबा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आप सोचिए अगर बच्चे कोई ट्रैजिक बात बता रहे होंगे, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, तो और तकलीफ़ हो जाती है। तो अब ये एक मकालमा है एक बच्ची का अपने बाप से, लेकिन ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, शहज़ादी है। ये बाप कोई आम बाप नहीं, शहज़ादा है, शहज़ादा है हुसैन, शहज़ादी सकीना। अगर इस उनवान से आप

0: तो ये जो कुछ है ये तो उसकी निस्बत बहुत अच्छा है कि अब जो होने वाला है और तब तो हम भी नहीं होंगे. तो ज़रा आप इस मुतालिक फरमाइएगा, इन लम्हात से मुतालिक भी, और कि इमाम आली मकाम ने अपनी बेटी से क्या मकालमा किया होगा, कैसे रुख्सत ली होगी, फिर खुद जाके जब शहीद भी होते होंगे तो मैं सोचता हूँ कि जनाब सकीना भी तो आती होंगी जहन में कि चलो जनाब अली अकबर तो शहीद हो गए, जनाब अली असगर तो, लेकिन ये तो सकीना अब, और अब तो मर्दों में कोई भी नहीं है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम मोहम्मद बाकर. आप इस उनवान से फरमाइएगा.
1: नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा. अब आप तिलाल हुसैन क्या कहे, फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर. फिर क्या हुआ शाम गरीबा, ये आप जानते हैं ना, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात में मादर. इमाम हुसैन तसल्ली दे रहे हैं, फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात में मादर. वो कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर, इसलिए कि अली असगर माँ के साथ सोते थे, सकीना बाबा के साथ सोती थी. वो कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर. अब क्या जवाब दे माँ हुसैन, अली असगर भी तो नहीं रहने वाले ना. शह ने कहा बस जिद ना करो सदके में तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आकर वहीं सोएंगे बीबी. एक 4 साल की बेटी फरमा रही है, वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार, आप भी छोड़ के जा रहे हैं, मैं आपसे ना बोलूंगी अब या शह अबरार, अच्छा ना अगर कीजिए जल्द आने का इकरार, मर जाएगी शब में तड़प कर ये दिल अफगार. कैसी हैं ये बातें, दिल मेरा रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा. यहाँ पर ये कैफियत है कि अब इमाम हुसैन क्या कह के रुख्सत हो, क्या कहें अब. माया के लो रोन आप सब्र करो बाप को जानी, कुछ देती हो अब्बास को पैगाम जबानी.
0: अच्छा,
1: ये कह के इमाम हुसैन जाना चाहते हैं.
0: हाँ.
1: बाबा नहीं, वो चचा अब्बास भी यही कह के गए थे पानी का, वापस नहीं आए. कुछ देती हो अब्बास को पैगाम जबानी, उदे है लबे लाल है ये तशना दहानी, मिलता है तो बीबी के लिए लाते हैं पानी, महबूब इलाही के नवासे हैं सकीना, हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं सकीना. ये कहकर अब आप दिलाल हुसैन चले. शायद इमाम हुसैन वो वाहिद बाप है इस कायनात में कि जिन्होंने खुद अपनी बेटी के सर पर ऐसे हाथ रखा जैसे यतीमों के सर पर कोई हाथ रखता है अपनी जिंदगी में. कहा बाबा अच्छा मेरे सर पर आप वैसे हाथ रखे जाएं जैसे यतीमों के सर पर आप हाथ रखते हैं. करबला में आज तक वो मकाम एक छोटी सी जरी है जहाँ पर इमाम हुसैन का जुलजना चलते हुए रुक गया. कहा जुलजना ये आखिरी जहमत है, उसके बाद तुझे जहमत नहीं, हुसैन ने जाना है वापस भी नहीं आना. तो उसने अपनी नज़रों से इशारा किया तो देखा वो कदमों से लिपटी हुई एक बेटी फरियाद कर रही थी कि मेरे बाबा के जुलजना मेरे बाबा को मख्तर में नहीं ले जा. ये वो मौका था कि जब अब अब्दुल्लाह हुसैन तशरीफ़ लाए, फिर से प्यार फरमाया. ये वो आखिरी मौका है कि जब बेटी को बाप का प्यार नसीब हुआ. फिर तो शिविर के तमाचे थे, उमर साथ के घोड़े थे, और उस वक्त फरमाया कि बाबा अच्छा आप जाना चाहते हैं तो एक बार ऐसे हाथ रखें जैसे आप यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं. इमाम हुसैन तशरीफ़ ले गए. आशूर का दिन गुजरा है, इमाम हुसैन फरमाते थे अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा है, अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है. तुमने मेरे अब्बास को भी मार दिया, तुमने मेरे अकबर को भी मार दिया, तुमने मेरे कासिम को भी मार दिया. लड़ते लड़ते फुरात के करीब पहुंचे तो अब्बास कलाशा था. फरमाया अब्बास बूढ़े भाई की जंग देखी अब्बास. अब अब्दुल्लाह हुसैन इस तरह से शुजात के साथ वारिस ज़ोर हैदर कर्रार थे. हुसैन ने समझाया कि हुसैन मजलूम ज़रूर है, मजबूर नहीं है हुसैन. फिर एक सदा आई कि या तो नफ्सुल मुतमईना इरजे इला रब्बिक रादियतन मर्ज़िया, पलट आए इत्मीनान वाले हुसैन इस आलम में कि आप अपने रब से राज़ी हैं, आपका रब आपसे राज़ी है. इमाम हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फ़ौजें वापस पलट आईं. फ़िरक़तुन बिर्रिमा व फ़िरक़तुन बिस्सैफ़ व फ़िरक़तुन बिलहजर, किसी के पास तीर, किसी के पास तलवार, किसी के पास कुछ नहीं था तो पत्थर उठा लिया. अब अब्दुल्लाह हुसैन ज़ख्मी होते चले. एक कैफियत वो आई कि राकिब दोश रसूल जुलजना पे डगमगा.

0: पा रहे थे, कभी दाहने झुकते थे, कभी बाहने झुकते थे। हुरमला के कई तीर हैं आशूर के दिन। एक हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम को मारा था, एक सीने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर उस वक्त मारा था, और ये वो तीर है कि इमाम हुसैन उसे सीने से नहीं निकाल पाए, इसलिए कि जब निकालते थे तो इमाम हुसैन का सीने अथर पूरा बाहर आ जाता था। फौज से इमाम हुसैन ने उस तीर को निकाला और फिर इमाम हुसैन ज़मीन करबला पर तशरीफ़ लाए। इस आलम में के तीरों पर मुअल्लक़ थे अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ज़ियारत नाहिया एक ज़ियारत है इमाम हुसैन की, जिसमें उनके मसाइब का बयान है। उसमें यह है जो ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तालीम करता है, फरमाया कि शिमरु जाल सुनाला सदर। एक वक्त वो था कि इमाम हुसैन दोशे रिसालत पे सवार थे बचपन में।
1: ओहो,
0: अब ये कैफियत है कि शिमर इमाम हुसैन के सीने पर है, काबे सुनाला लहियत है, उसने इमाम हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। 12 ज़रबतों से अब अब्दुल्लाह हुसैन इस दुनिया से रुखसत हुए। और उसी ज़ियारत नाहिया में है कि आप अपने दस्तों पा कभी फैलाते थे, कभी समेट लेते थे, बहुत सुकून से खुदा की तरफ चला है हुसैन, पता चले ना ये माँ को तड़प रहा है हुसैन। और उस वक्त है कि आप अपनी नीम खुली हुई आँखों से अपने बच्चों की तरफ देख रहे थे। हुसैन जानते थे कि सकीना यतीम होने वाली है, तमाचे लगने का वक्त करीब आ गया। तो वक्त आखिर इमाम हुसैन वहाँ कत्लगाह से खेमे की तरफ अपनी बेटी को देख रहे थे, और जब इमाम हुसैन का जुलझला वापस पलटा, कौन था कि जो खबर शहादत इमाम हुसैन को लेकर आता, तो वही 4 साल की बच्ची जो सबसे आखिर में विदा हुई थी, वही सबसे पहले तशरीफ़ लाई और एक सवाल किया, या जवाद व सुखिया अभी हम खुद लाचाना। ये नहीं पूछा मेरे बाबा को तलवारें कितनी पड़ी, ये नहीं पूछा मेरे बाबा को नेजे कितने लगे, कहिए बता जब बाबा को ज़िबा किया था तो क्या थोड़ा पानी पिलाया था, पानी तो एक जानवर को भी पिलाते, ये तो नवाज़ रसूल हैं, जिगर गोशे बतूल हैं। और फिर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह आई, इम्तिहान हुसैन ख़त्म शुद, इम्तिहान ज़ैनब शुरू शुद, के दो बाब हैं करबला के, एक ही हुसैन रकम कर व दी गरी ज़ैनब। अब बीबी ज़ैनब तशरीफ़ लाई हैं इमाम हुसैन के लाशे पर, तो एक अजब काम किया बीबी ने, हर गिरिए से पहले फरमाया अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान।
1: कमाल,
0: ये मोजज़ा है। फरमाया कि परवरदिगार तो एक बहन की तरफ से इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। और फिर का अंता अखिल हुसैन, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है, इसलिए कि लाश टुकड़े टुकड़े थी, सर मौजूद नहीं था। ये कैफियत थी कि गोया मसाइब का एक बेसाख्ता जुमला ज़बान मुतार से जारी हुआ कि क्या आप ही का लाश है ये। मैं आपसे एक फितरत की बात कहता हूँ कि जब एक किसी मैयत की आखिरी जो कैफियत देखी होती है ना किसी ने, वो हमेशा जहन में रहती है। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह हमेशा उनकी निगाहों में वो लाशा रहा होगा ना, आखिरी कैफियत वही थी। आज भी ज़ैनब की आती है सदा, भाई हुसैन तेरा चेहरा तेरी आंखें भूल कब पाई हुसैन, ठंडा पानी जब पिया बस तेरी याद आई हुसैन। तो रिवायत तो यहाँ ख़त्म हो गई कि आंत अखिल हुसैन, दिल कहता है कि शायद लाश अथर से आवाज़ आई हो, आंती उख्ती ज़ैनब, क्या आप ही मेरी बहन ज़ैनब है। लेकिन इमाम हुसैन ने कभी
1: बेचादर, इस आलम में तो जनाब ज़ैनब कभी घर पे भी नहीं देखा होगा,
0: बेचादर नहीं देखा था ना। तो अजब नहीं बीबी से पूछा हो क्या आप ही ज़ैनब है, कि सर पर रिदा नहीं है, और अब हिमक ना चादर, इस बहन को कूफा और शाम के बाजारों में जाना है और हुसैनियत को पहुंचाना है।
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अकबर। तो ऐसे मैंने कहा कि मुझे यूँ लगता है कि यानी इमाम आली मकाम के लिए ये तकलीफ़, ये शिद्दत, तीर लग रहे हैं, नेज़े लग रहे हैं, खंजर चल रहा है, इससे बड़ी तकलीफ़ क्या होगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम, शायद ये तकलीफ़ के रसूल अल्लाह के घर की भीड़, मुझे कहते हुए हया आती है, नज़रें झुक जाती हैं, अल्फाज नहीं मिलते, हमारी अपनी माओ बहनों बेटियों का कोई मुकाबला ही नहीं है, ज़ाहिर इन हस्तियों से उनके पैरों की खाक नहीं है, हम उनके बारे में ये जुमला नहीं कह सकते कि भरे बाज़ार में हो और कोई रिदा से आगे, मैं नहीं कह सकता। तो ये तो मतलब गोया जो शिमर का खंजर चला इमाम अली मकाम पे, वो मौसा भी कहना ठीक हुआ कि

0: उसकी तकलीफ की शिद्दत शायद इमाम के लिए फिर कम हो, लेकिन मुझे उस खंजर से जो चादर छीनी वो उसकी तकलीफ ज्यादा होगी।
1: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
0: अब मैं चाहता हूँ कि इख्तिताम में इसी माहौल को याद करके हम इस बज़्म का इख्तिताम करेंगे
2: कि ये शिमरन
0: हाय हाय
2: दो

0: Right.
1: सही है.
0: टाइम जोन प्लेस. थर्ड जो पर्सनालिटीज हैं उन इंसिडेंट में वो कौन है.
1: सही है.
0: अब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बहुत सारी इंसिडेंट जिनको आज हम याद भी करते हैं या हमें कभी याद आते हैं या हम रिपीट करते हैं वो सिर्फ टाइम है.
1: यानी
0: मतलब फलानी डेट को ये हुआ तो हम साल बाद उस डेट को मना लेते हैं मगर शायद उसमें वो नहीं होता. अच्छा डेट आ गई, अच्छा चलें, अच्छा ये डेट थी.
1: हाँ.
0: कुछ पर्सनैलिटीज हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ काम ऐसा करती हैं वो ऑन एंड ऑफ इंसान की जिंदगी में रहती हैं. उनसे इंसान की अटैचमेंट हो सकता है किसी एक ग्रोह की अटैचमेंट हो सकता है किसी एक ग्रोह की अटैचमेंट ना हो.
1: No,
0: हो सकता है एक अरसे तक हो, एक अरसे के बाद वो भी वैनिश हो जाए. कुछ चीजें जो होती हैं इन सारी चीजों को जमा करती हैं.
1: हाँ.
0: कि जहां पर टाइम भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर प्लेस भी इंपॉर्टेंट है और जहां पर वो पर्सनैलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट उस इंसिडेंट का हदफ और मकसद क्या है.
1: वाह.
0: वो चीज उसको जिंदा रखती है. अब ये जो करबला का जैसे आपने बात किया कि कभी आउटडेटेड नहीं होती है.
1: हाँ.
0: हर दफा जो है वो हर दफा आती है. तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद और हदफ क्या था.
1: सही.
0: किस वजह से चीज वाकया पेश हुई. मतलब ये कोशिश तो की मुअर्रखीन कहीं कहीं के मतलब इसको मतलब कोई एक नॉर्मल सी बात कर दी जाए ताकि मतलब इतना ज्यादा
1: कि ठीक है इख्तलाफ हो गया.
0: हो गया नहीं मगर असल चीज वो नहीं थी. असल चीज थी कि सैयदुश्शोहदा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती के बारे में खुद रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात. यानी ये खुद पर्सनैलिटी क्या है. इन्नल हुसैना मिसबाल हुदा व सफीनतुन निजात क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कुरान कह रहा है कि रसूल खुदा सिद्क बयान कर रहे हैं, अमीन है, सिद्दीक है. मतलब उनकी जबान के जरिए से हमने कुरान, हमें किसने बताया कुरान है, खूब वो बयान फरमा रहे हैं इस हदीस को के जो मुतवक्कल है, हर किसी ने इसको बयान किया है.
1: हाँ,
0: कि बेशक इन्नल हुसैना मिसबाल हुदा यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिसबाल हुदा है यानी सफीन हिदायत का चराग है. ये नहीं कहा कि कब है, ये नहीं कहा कब होंगे, कोई शर्त नहीं है, चराग है. यानी कयामत तक की और किस चीज की कौन सी तारीखी के लिए चराग है. यानी जहालत के अंधेरे हों जब इंसान जो है वो गर्क हो रहा होगा तब इमाम हुसैन हिदायत का चराग होंगे. यानी ये जो बात आज जो आज आप कह रहे हैं कि आज तक रोशन है और आज तक लोग हिदायत ले रहे हैं ये क़ारा रसूलुल्लाह है.
1: वाह वाह.
0: अगर आप इस एस्पेक्ट से इसको देखें तो
1: सरकार के कॉल की ताईद
0: सरकार के कॉल की ताईद है जो आज हो रही है. और सफीना तो निजात है यानी किश्ती है निजात की. यानी जब दुनिया डूब रही होगी गर्क हो किस में, दुनिया में, मादियत में, अपने नफ्स में, अपने ख्वाहिशात में, तब इमाम हुसैन की किश्ती जो है वो. अब इस किश्ती को चलना कैसे है, ये चराग रोशन कैसे होगा, अब ये करबला ने हमें आके बताया. यानी ऐसा बर्न हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने वजूद को इश्क इलाही में ऐसा जला दिया कि ये चराग कयामत तक रोशन है. इसको हम नहीं बुझा सकते, इसको कोई दुनिया नहीं बुझा सकती, इसको दुनिया मिटा नहीं सकती, इसको दुनिया तहरीफ नहीं. बेशक रिचुअल्स की वजह से चीजें ऐड ऑन ऑन हो जाती हैं, कुछ मुल्कों में अलग तरीका, कुछ मुल्कों में अलग तरीका, बट जो कोर
1: एसेंस है, जो कोर है
0: वो, उसको अगर आपने देखना है तो उसको आप देख लेंगे जो नॉन मुस्लिम है. मतलब चले हम तो मुस्लिम होते हुए हमारी एक वाबस्तगी है कि रसूल खुदा के नवासे हैं, इमाम हैं, एक असहाबी हैं, असहाबे किसा में से हैं. मतलब हम सबकी एक वाबस्तगी है. मगर जो नॉन मुस्लिम अभी तक उसको ले रहा है, नॉन मुस्लिम उससे लेसन ले रहा है, वो क्यों ले रहा है. क्योंकि एक्चुअल जो चीज इंसानियत को हुर्रियत और आजादी का दर्ज दे रही है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है.
1: तभी दुनिया के बड़े बड़े मुअर्रखीन कोई तवील जेल काट के आता है, कोई फला तो अपनी इंस्पिरेशन
0: नेल्सन मंडेला देख लें आप, बाकी लोगों को देख लें आप. इवन जो क्रिश्चियंस के बड़े बड़े फादरी हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास हुसैनियत का परचम होता तो हम तो पूरी दुनिया को क्रिश्चियन कर चुके होते, मसीहत कर चुके होते. यानी आखिर क्या
1: शायरी अलग एक पूरा एक भाव है.
0: हाँ, अब वो ये क्या चीज ले रहे हैं, वो ये ले रहे हैं कि एक शख्स, एक हस्ती यानी जिसका अपना डेजिग्नेशन है, अपने जमाने में भी डेजिग्नेशन है, अपने जमाने में भी जाहिर है मतलब लोग जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम. तो अब क्या किया जाए ऐसे में. वहां पर ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू था कि जहां इमाम हुसैन ने मदीना छोड़कर असल में अपने इस मैसेज को ट्रेवल करवाया. और है तो बहुत शॉर्ट ट्रेवल, 28 रजब से लेकर अगर आप देखें 2 मुहर्रम को امام حسین کی جو ہے وہ ایسے ہی

0: ट्री है जहां से वो मक्का जाते हैं, और जो मक्का में हज तक हैं, हज से एक दिन पहले वो जहां एहराम उन्होंने खत्म किए कि अल्लाह के खाना काबा की जो है वो हुरमत बाकी रहे, यहां पर खून खराबा ना हो, मैं छोड़ के जा रहा हूं ये, क्योंकि देख रहे थे कि एहराम के अंदर तलवारें आ रही हैं। अब अगर आप 9 जिलज देख लें, 8 जिलज देख लें, अगर उस वो भी इमाम हुसैन निकलते हैं तो इट्स ओनली फ्यू डेज एक्चुअली, तो वो करबला,
1: दो मुहर्रम करबला आ गए,
0: करबला में पहुंचते हैं। ये ट्रेवल असल में ये जो सफर है, ये सफर इल्लल्लाह है, और जो खुदा की तरफ सफर कर रहा है वो हमेशा चीज मानते गार है, वो चीज बाकी है। खुद रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो फना है, जो तुम्हारे पास है फना भी है, हिसाब किताब भी है उसका, लेकिन जो तुमने खुदा की राह में दे दिया वो बाकी रहेगा। अब चाहे कुछ भी तो तुम बाकी, अब अगर कोई चीज बाकी रहनी है तो वो अपने मकसद और हदफ की वजह से बाकी रह गई है, और वो क्या था कि वो इंसानियत को बेदार करना था। खुद अपनी जात के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये काम नहीं किया, क्योंकि वैसे भी वो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के लिए काम करना है हर चीज है। तो ये जो आज आज देखे ना, कि अगर आज भी हम चाहते हैं, कोई भी कौम चाहती है, कोई भी मिल्लत चाहती है, कोई भी चाहती है कि अगर आज वो जिंदा रहे तो वो कैसे जिंदा रहेगी, वो आजाद, और आजादी हक है, इंसान का हक है, हर शख्स हर कौम की आजादी है। अगर कोई उसकी आजादी में पेनिट्रेट करना चाहता है, अगर कोई उसको जुल्म के जरिए दबाना चाहता है, अगर वो फर्म अपने आप को खड़ा रखता है और अपनी आजादी के लिए, इसलिए इमाम हुसैन ने कहा है हाथ में न जिल्ला, कि 100 साल की जो है वो ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि इंसान एक दिन इज्जत की मौत मर जाए। इसको प्रिफेर किया उन्होंने कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं, मैं इन हालात के आगे सरेंडर कर दूं, मैं जो है वो सिस्टम के आगे सरेंडर कर दूं, ना हो मैं बेहतर है, मैं आज के दिन आशूरा के दिन पूरे कुंभे के साथ चला जाऊं। मगर क्या हुआ कि वो जो दुनिया उस वक्त समझ रही थी, जो सामने वाले, कि मतलब हम जीत गए, हमने इनको खत्म कर दिया, असल में इनको खत्म नहीं किया, असल में ये वो एक शायर हमारे दोस्त है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया, वरना मैं शेर मुझे इतने जहन में नहीं रहते, लेकिन उसका मफहूम ये था कि असल में ये सीने नहीं थे कि जिन्होंने तीर खाए, ये तीर थे जो सीनों में जकड़ गए, ये बदन नहीं थे जिनको रौंदा गया, ये वो घोड़ों की टापें थी जो खुद रोन दी गई।
1: एक शायर लिखा, घोड़े तो दौड़े लाशें शब्बीर पर मगर, घोड़े तो दौड़े लाशें शब्बीर पर मगर तारीख ने यजीद को पामाल कर दिया,
0: पामाल कर दिया। असल यही था कि वो खेमे नहीं चले, असल में वो रोशनी थी कि जो आज तक लोगों को हिदायत दे रही है, इज्जत दे रही है, आज भी यही फॉर्मूला है। अगर आज देखें दुनिया, अगर आपके सामने फलस्तीन और गजा के हालात और ये सारी सिचुएशन है, क्या चीज है जो फर्म है खड़ी हुई है, कौन सब गिर गया, घर गिर गए, तबाह हो गया, कितना हिस्सा जो है वो खत्म हो गया, क्या चीज है जो खड़ी रख रही है। ये अगर ये इंसिडेंट आशूरा का नहीं होता तो किसी के पास एक ऐसा
1: इंस्पिरेशन ड्रॉ करने के लिए
0: पैरामीटर नहीं था। एक हर चीज का एक पैरामीटर होता है, एक रोल मॉडल होता है, एक ऐसी चीज होती है कि जिसको हम फॉलो करें। करबला वो है, आज आप देख लें कि हमारी अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर भी जब हवादिस हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, वैसे भी खुदा ना खास्ता किसी का जवान बेटा दुनिया चला जाए तो हम कहते हैं कि मतलब हमारा जवान कहाँ और हजरत अली अकबर
1: कहाँ,
0: क्यों ऐसा है, क्यों ये पैरामीटर हर किसी के अंदर फिक्स्ड हो गए हैं, क्योंकि ये था आखरत तक के लिए, और ये हुर्रियत और आजादी है, आजाद हो जाओ, और ये आजादी का दर्श है। आज आप देखेंगे मुसलमान के पास, और फिर कुरान की आयतें राहत करिए कि वला तहसबन्न الذین قتلوا فی سبیل اللہ, तुम गुमान नहीं करो कि जो अल्लाह की राह में मारा गया, तुम गुमान नहीं करो कि मारा गया, बल आयाउन, बल्कि जिंदा, जब कुरान कह रहा है
1: रिस्क मार रहा
0: है, हाँ, इंद रब्बहिम युरज़कून, तो जब ये कुरान ये कह रहा है कि ये जिंदा है, और जो वैसे जो अल्लाह की राह में मारा गया जिंदा है, तो इसीलिए
1: तो गोया भाई बागानी इसको कंक्लूड करते हैं कि हर हर गुजरते साल लम्हे के साथ और आसानी से समझ में आ रही है बात कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो,
0: हर कौम पुकारेगी
1: हमारे हुसैनी कि भाई ठीक है, कोई भी कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए वो करबला के पैरेलल तो उसको ड्रॉ कर ही नहीं सकते, कोई कितना ही बड़ा मजलूम हो इमाम अली मकाम के पैरेलल ड्रॉ कर ही नहीं सकते, लेकिन इंस्पिरेशन ड्रॉ करने के लिए एक पैमाना ऐसा सेट कर दिया है इमाम अली मकाम ने कि अब दुनिया का हर मजलूम उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकता है,
0: बिल्कुल रास्ता डिजाइन कर दिया है। और आज दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, अगर लोग हिदायत पाते हैं,

0: अगर कोई हिस्ट्री पढ़ता है, कोई तारीख पढ़ता है, इवन मैं एक कन्वर्ट्स की स्टोरी देख रहा था यूट्यूब पे, तो मतलब वो मुसलमान होना है और उसके बाद फिर कैसे क्या, तो उसने ऐसे ही देखा कि जैसे यूट्यूब पे तो एक स्पीकर जो थे वो इंग्लिश में कुछ बयान दे रहे थे, तो वो कह रहे थे मैं बयान सुना बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एंड ऑफ हिज लेक्चर उसने एक नाम लिया हुसैन, तो मैंने देखा लोग रोना शुरू हो गए,
1: सिर्फ नाम
0: लोग, हाँ नाम लिया और लोग रोना शुरू, तो मैं मुझे अंदर ये एक तजस्सुस पैदा हुआ, एक लाइक एक खोज पैदा हुई कि ये इस नाम में क्या है कि नाम लिया और आगे सब गिरिया कर रहे हैं, तो मैंने रिसर्च शुरू कर दी, और जब मैंने रिसर्च शुरू की तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इन्नल हुसैना मिस
1: जहां से बात शुरू हुई थी
0: बस सफीन।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश अलामा नुसरत बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम इंशाल्लाह अब अगले सेशन में ज़रा इसी बात का एक और एस्पेक्ट वाकया करबला ज़रा कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अलामा नुसरत बुखारी साहब के साथ जो तीन सेशन थे इस नशरियात में। नशरियात हमारी जारी है बाउनवान शान हुसैन ज़िक्र इमाम अली मकाम है, और हम ट्रेजेडी ऑफ करबला को ज़रा डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ कि एक वो एस्पेक्ट है जिसमें हम वाक़यात और मनाक़िब और मरसिए तहतुल लफ्ज़ में नज़म में नसर में डिस्कस कर रहे हैं, और ज़रा कुछ और अनावीन से हम अल्लामा क़िबला मौलाना सैयद नुसरत बुखारी साहब के साथ बात कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की इख्तितामी नशस्त है, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब वक्त देने का, बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ, ज़ाहिर दास्तान करबला वाक़िया करबला कहने को एक बात, इसके अंदर इतने सारे वाक़यात जमा हुए हैं, अब कुछ वाक़यात मैं सोचता हूँ तो फिर मैं बहुत मतलब अपने तौर पर ज़रा इट सरप्राइज़ मी कि ये कैसे, कि ये सिर्फ शायरी तो नहीं है, जोश खिताबत तो नहीं है कि तीरों के मुसल्ले पर वो सजदे शुक्राना, हमने वाकई देखा कि जंग का मैदान है, जब लिटरली तीर बरस रहे हैं, जब असहाब शहीद हो चुके हैं, तो इमोशनली भी एक ज़ाहिर एक बड़ा धचका है अपेरेंटली, और धूप है, गर्मी है, तमाजत है, रेत है, और ऐसे में इमाम कह रहे हैं कि इनसे कहो अभी नमाज पढ़ लें, तो अभी तो जंग हो रही है, नमाज पढ़ लें। या हम देखते हैं शब आशूर जो कि एक मसाइल से भर, जो रोज़े आशूर के वाक़यात तो अपनी जगह हैं, लेकिन हम शब आशूर के वाक़यात सुनते हैं कि इनसे कहो आज नहीं ये मार का कल अंजाम दे दें, हम एक रात खुदावंद ताला की इबादत करना चाहते हैं। फिर मैं सुनता हूँ कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने शाम के जिंदान में भी नमाज तहज्जुद भी जो है वो हमेशा अदा की, या फिर वो इमाम आली, अभी हमने दुआ रोज़े अरफा अभी गुजरा है, इमाम आली मकाम से मंसूब जब हम दुआए अरफा सुनते हैं, तो अगर मुझे ना मालूम हो कि इमाम आली मकाम के अल्फाज हैं, तो ऐसा लगे कि एक इंसान ने मतलब जितना आजिज, मतलब मैं और अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, शायन निशान नहीं होगी, जितना आजिज हो सकता है उतना आजिज है कि या अल्लाह मैं तेरा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा बंदा, और तू तो ये जो एस्पेक्ट है ये ज़रा समझाएं कि ये तो वो हस्तियाँ हैं कि मतलब जिनके, यानी जिनके बारे में ये ख्याल भी नहीं किया जा सकता, ख़ता से दूर, रिच से दूर, लेकिन इनके इतने सारे वाक़यात जो कि सब रिवॉल्व कर रहे हैं खौफ खुदा की जाने, इबादत खुदा की जाने, ये क्या है कि मतलब अभी तो भाई जंग होनी है कल सुबह, तो अभी इस वक्त भी, यानी अब मैं अपनी एक आमियाना अंदाज में समझने के लिए बोलूँ कि अभी इस वक्त भी तिलावत कलाम है, अभी तो जंग हो रही है, शुरू हो गई है, आधे लोग शहीद हो चुके हैं, अभी आप कह रहे हैं कि रुको हम नमाज पढ़ लें, ये हुसैन और खुदा ये जो कनेक्शन है ये ज़रा समझाया हमें।
0: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए यही चीज़ जो है जिसे सैयदुश्शोहदा अलैहिस्सलाम अपने हर अमल से बताना भी चाह रहे थे, और शायद तारीख में कई लोग इस बात को महव करना चाहते थे या मिटाना चाहते थे, या फिर बाज़ औक़ात बयानात की कोताही इस बात को बयान नहीं कर पाती है कि सैयदुश्शोहदा अलैहिस्सलाम का असल हदफ खुदावंद मुताल की रज़ा है। जो हस्ती अपने आखिरी लम्हों में ये कहे बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अला मिल्लत रसूलल्लाह रज़न बेकज़ा ही
1: तस्लीमन लिअम्र,
0: यानी हर अमल किसके लिए है, तुझे खातिर है, ये अमल ऐसा नहीं हुआ कि खुदा ना खास्ता उस जगह पे जाके हुआ है,
1: हाँ।
0: नहीं, असल ये इब्तिदा है, इश्क है, इसे जो आपने दुआ अरफा की बात की किस तरीके से जो है वो पूरी दुआ روایت یہی ہے کہ امام حسین کھڑے ہو کر امام حسین نے اس دعا کو عرفہ کے میدان میں پڑھا ہے اور مسلسل

0: सल उनकी आंखों में आंसू जो है वो रेस थे। कैसे मारिफत परवरदिगार, जो जितनी मारिफत रखेगा उतना झुकेगा, उतनी तवाज़ो करेगा। मैं जिसके बारे में जितनी मारिफत रखूंगा मैं उसके बारे में उतना जानूंगा, मैं उसके साथ उसी तरीके से बिहेव करूंगा, मैं उसी तरह मिलूंगा, मुझे पता है कि मतलब ये शख्स क्या है, ये कैसी है, हाउ टू रिएक्ट। एक्चुअली इनसे बेहतर कौन जानता था खुदावंद मुताल को, इनके मतलब ये जाहिर है जिस जहाँ परवरिश पाई है, जो तरबियत गाह है, खुद नवास है, रसूल हैं, रसूल खुदा ने किस तरीके से, अब जहाँ पे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद है मौलाए कायनात, यानी ये इनकी दरगाह तौहीद है, तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, खालिसतन खुदावंद मुताल की खातिर है। कुरान की आयात दलालत कर रही है कि सूरह इंसान के अंदर आप देखें कि जब 3 दिन साइल आया तो इन्होंने क्यों खाना दिया है, किसके लिए खाना दिया है, सिर्फ परवरदिगार के लिए। उसके बाद सारी जिंदगी अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर आप कह रहे हैं कि जी नमाज जैसे जंग अल्लाह के लिए,
1: जी जी जी,
0: तो जंग इस तौहीद के लिए, जंग इस सजदों के लिए, जंग इस इबादत के लिए। वो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने पूरे वजूद से दिखा रहे हैं। हम ये देखें कि लका अल्लाह यानी खुदा से मुलाकात इम्पोर्टेंट है। शब आशूरा मुस्लिम ने औसजा जो हबीब इब्ने मज़ाहिर के साथ कूफा में थे और आए, और बुज़ुर्ग जो है वो उनमें से है कूफा के, वो रात को उनके चेहरे पर तबस्सुम है, शब आशूरा
1: मुस्कुरा रहे हैं,
0: मुस्कुरा रहे हैं, तबस्सुम है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने पूछा उनसे कि आज की रात मुस्कुराने की रात है, कहा नहीं मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मेरे और खुदा की मुलाकात में चंद साहतों का फासला रह गया। अब जब जिंदगी का हदफ खुदा से मुलाकात हो, लखा अल्लाह हो, देखें हम ये जो दुनिया है ना, हम दुनिया के अंदर हैं बेसिकली जब हम दुनिया से हम एग्जिट होंगे ना, तो हम एक लंबे ख्वाब से बेदार होंगे। हदीस पैगंबर है, अन्नासो नायमुन, लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब बेदार होंगे।
1: बजायर जब आंख बंद होगी तब असल में आंख खुलेगी,
0: असल में खुलेगी, तब हमें लगेगा एक लंबे ख्वाब के अंदर थे। और ये थोड़ी देर है, जब इंसान देखे ना, जब इंसान कहीं सफर करता है, ट्रेवल करता है, 1 घंटे के लिए कहीं आया, मैं सब हम यहाँ स्टूडियो में आए थोड़ी देर के लिए आए, अब हम क्या स्टूडियो से दिल लगा लें, क्या चीज़ों से दिल लगा लें, अक्ल तकाजा करेगी कल ये टेम्पररी है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये दुनिया की हकीकत यही है, और इस हकीकत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बेहतर कौन जानता था कि दुनिया की हकीकत क्या है और ये किस चीज़ के लिए आए हुए हैं। उनको दुनिया चाहिए, वो इमाम हुसैन ने तो उनको कहा तुम दुनिया चाहिए, मैं तुम्हें दुनिया दे देता हूँ, तुम्हें ये चाहिए, तुम इस काम के मुर्तकिब ना हो मेरे खून के। आखिरी वक्त तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि हिदायत का चराग थे, हिदायत देना
1: चाहते,
0: आखिर तक करते रहे, आखिर जब सब शहीद भी हो गए तब भी इमाम हुसैन ने बयान दिया है कि मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा खून अपनों का, तुम हिदायत क्यों, क्योंकि अल्लाह की खातिर था। अब हमारी जिंदगी में तो कोई नुकसान हो जाए, मैं तो सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा, मैं
1: तो गेट अ चांस एंड आई विल सेटल द स्कोर, कहते हैं ना।
0: लेकिन अगर लिल्लाह जिंदगी गुजारी जा रही है, मैं दरगुजर करूंगा, मैं खुदा की खातिर चलूंगा, ये सब खुदा, और क्यों खुदा की खातिर, आखिर क्या है परवरदिगार, तो जिंदगी आशिकाने है, इश्क है खुदा से, खुदा से मोहब्बत है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ वो बाकी रहेगा। जब वो चीज बाकी रहनी है तो इंसान उसकी तरफ बढ़े ना जिसने बाकी रहना है, जो फना हो जाएगा उससे मैं क्या दिल लगाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन हमारे फ़ज़ल, इमाम हुसैन तो अरफा में कहते हैं ना, परवरदिगार मैं चीज़ों के जरिए से तुझ तक नहीं पहुंचा, तू चीज़ों का मोहताज नहीं है कि मैं तुझे चीज़ों के जरिए से पहचानूं। दुनिया तो होती है ना कि मैंने अच्छा सूरज देखा, अच्छा मैंने ये देखा, अच्छा मैं ये सिस्टम देख रहा हूँ, ये एक वे है ना, ठीक है, अच्छी अप्रोच है कि मैं निशानियों के जरिए से यानी आयात इलाही के जरिए से अल्लाह को पहचान रहा हूँ, दिस इज द वन वे एक्चुअली। बट सेकंड क्या है, सेकंड ये कि परवरदिगार लहसा का मिसले ही, तू गनी है, तू बेनियाज है, अल्लाह अल्लाह कुल्ले शहन कदीर, तू हर चीज़ पे कुदरत, तेरे इल्म में हर चीज़ पे आता किया हुआ, तू मोहताज नहीं है कि मैं चीज़ों के जरिए से तुझ तक पहुँचूँ, मैं तेरे बाद चीज़ों को पहचानूंगी, तू उनका खालिक है। ये इबादत, ये मनाजात और ये सब क्यों, क्योंकि सब फना हो जाएगा, सिर्फ वो बाकी है, जो बाकी है اس میں اپنے آپ کو فنا کر دو. یہی تو وجہ ہے کہ آج امام حسین کا دیکھیں, امام حسین نے خداوند متعال

शहीदों के बराबर कौन है, नूर है आले पयंबर छोटे बड़े सब एक हैं, नूर है आले पयंबर छोटे बड़े सब एक है, इनमें कहिए असगर कौन है, इनमें अकबर

कैद खाने में किया हिंदा ने बानों से सवाल, कैद खानों में किया हिंदा ने बानों से सवाल, नेजे पे छोटा सा सर था उसकी मादर कौन है, करबला वाले शहीदों के बराबर कौन है। कैद यूं आले पयंबर है के खुलता ही नहीं, कैद यूं आले पयंबर है के खुलता ही नहीं, इनमें फिजा कौन है, जहरा के दुखतर कौन है, करबला।

के बराबर कौन है। आजादारों, एक अजीब सा एहसास दिल में आ रहा है और वो ये है कि हुसैन मज़लूम की कुर्बानी का और कुर्बानी हुसैन के मकसद का जो हक था वो शायद मैंने अदा नहीं किया। बेशक 10 दिन तक हमने आज़ादारी बरपा की, लेकिन फिर भी यूं लगता है कि मौला हम आपकी बारगाह में माफ़ी के तलबगार है। जो आपका हक हो सकता है वो मैंने अदा नहीं किया। क्यों? हमारे 8वें इमाम के पास एक अपना सहाबी आया है, अरबाब मिंबर से आपने ज़रूर सुना होगा, इब्न शबीब आए हैं और 8वें इमाम ने कहा, इब्न शबीब, ऐ शबीब के बेटे, इन कुंत बाकियन ले शै इन, ऐ हबीब, अगर किसी चीज़ पे रोना होना तो मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब के बेटे हुसैन पे रोना। आपको पता है क्यों 8वें इमाम हुसैन पे गिरिया करने को कह रहे हैं? क्योंकि उसके बाद शबीब को कहा, कहा शबीब फइन्नहु ज़ुबहा कमा युज़बहुल कबश। इब्न शबीब, जब भी रोना हो हुसैन पे रोना, क्योंकि हुसैन जो है ना, जैसे दुम्बे को ज़बह किया जाता है ऐसे उसे ऐसे हुसैन को ज़बह किया गया। आज़ादारो, थोड़ी आपकी याद दहानी के लिए कि जब हुसैन ने मज़लूम का जिक्र आता है तो कैसे इमाम हुसैन शहीद हुए ना। आज का ही दिन था, आशूर का दिन था, हुसैन मज़लूम अपने खैमे से निकले और घोड़े पे सवार हुए, लेकिन माजरा क्या हुआ, हुसैन का घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? जब हुसैन ने सोचा तो देखा घोड़े ने अपनी गर्दन को झुका, घोड़े की आंखों में आंसू। जब घोड़े की गर्दन की तरफ हुसैन ने देखा तो क्या देखा, एक छोटी सी बच्ची हुसैन के घोड़ों के पैरों से लिपटी हुई है, गोया बेजबानी से कह रही है, ऐ मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को ना ले जा। बस आज़ादारो, हुसैन अपने घोड़े से नीचे आए, अपनी बेटी को संभाला, तसल्लियाँ दी। एक मोड़ वो आया कि हुसैन मज़लूम मक्तल की तरफ रवाना हुए, वहाँ मक्तल की तरफ जब देखा वह नजर यमीनन व शिमाला, हुसैन ने देखा कोई नहीं है, एक आवाज़ बुलंद की, या फुरसान अल-अरब माली उनादिकुम वला तुजीबू, ऐ अरब के बहादुर शे सवार, मैं तुम्हारा मौला हुसैन तुम्हें पुकार रहा हूं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। आज़ादारो, हुसैन मौला मक्तल में गए, बहुत बहादुरी के साथ जंग की, लेकिन मौला कैसे ज़बह हुए? 8वें इमाम ने कहा ना, इब्न शबीब, हुसैन पे रोना, क्योंकि जैसे दुम्बे को ज़बह किया जाता है ना, ऐसे मेरे दादा हुसैन को ज़बह किया। ये पता कब चला? आशूर का दिन था, ज़ैनब कुबरा खैमे के अंदर। एक वक्त वो आता है कि जनाब ज़ैनब को कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए वो खैमे से निकलकर अपने बेटे सज्जाद के पास आती है और कहती है, बेटा सज्जाद, मैदान की कोई ख़बर नहीं आ रही, क्या कुछ पता चला मेरे माजाया का क्या हुआ? बस सैयद सज्जाद ने फूफी अम्मा से कहा, कहा फूफी अम्मा मेरी लकड़ी दीजिए, उसका सहारा लेकर मैं बाहर निकलता हूँ। सैयद सज्जाद मैदान में निकले, नजरा यमीना, एक तरफ देखा दूसरी तरफ देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक सैयद सज्जाद ने अपने सर को बुलंद किया, अब जो सर को बुलंद किया बेसाख्ता निकल पड़ा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला। ज़ैनब ने पूछा, बेटा ये सलाम कैसी? का फूफी जान देखिए, अरे बाबा का सर नोके नेजा पर है। आज़ादारो, हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया गया। आज़ादारो, ये ज़ैनब ने सब आंखों से देखा है ना, सैयद सज्जाद ने आंखों से देखा है।

कहती थी ज़ैनब है रूहे फातिमा बेवों के साथ, कहती थी ज़ैनब है रूहे फातिमा बे

कितनी बेबसी होगी आज हजारों साल के बाद कोई मेरे जैसा सुनाने वाला जब सुनाता है तो हमारी आंसू, हमारे आंसू रुक नहीं पाते ना। अरे कोई जाके सैयद सज्जाद को पूछे, मौला आशूर के दिन क्या हुआ था? अभी हाजी ने बरसिया पढ़ा ना, तो शायद सैयद सज्जाद याद दिलाएंगे और कहेंगे है मेरे बाबा के हजादार, बाबा जब आखिरी रुखसत के लिए मेरे खैमे में आए थे ना तो मुझे वसीयत करके गए थे सैयद सज्जाद, जब मदीना वापस जाओ तो मेरे शियों को सलाम कहना। और किसी शायर ने क्या खूब हुसैन मौला की नीयत को अपने शेरो शायर में नज्म किया है कि गोया हुसैन मजलूम ने कहा होगा, शियाती महमाद बिन माए तशरूबुनी, ऐ मेरे शियो अगर कभी ठंडा पानी पियो तो मुझ गरीब को याद करना, आओ समय तुम बे गरीबीन आओ शहीदीन फंद बुनी, और किसी गरीब की खबर मिले या किसी शहीद की खबर मिले तो मुझ पे आंसू बहाया करना। आजादारो उसके बाद हुसैन की ये तर्जुमानी शायर कर रहा है कि शायद हुसैन ने ये भी कहा हो अरे मैं नबी का वो नवासा हूं ये जो बेकसूर था लेकिन जिसको कत्ल किया गया, वह बेजुर दिल खैले अमदन सहकूनी, और मैं वही सिब्त रसूल था कि जालिमों ने अपने घोड़ों की टापों से जानबूझकर मेरे लाशे को बर्बाद किया। आजादारो अब सुनिए, मैं माओ से मुखातिब होता हूँ, शायर ने क्या खूब लिखा है कि हुसैन की यही दिली मुराद होगी। हुसैन ने कहा होगा, शियाती लैतकुम जमियान यौम आशूरा तंजुरूनी, ऐ मेरे शियो ऐ काश तुम आशूर के दिन अपनी निगाहों से देखते, कैफा तस्कील तिफलिन फाबौ यरहमूनी, अरे मैं किस तरह से एक छोटे बच्चे के लिए पानी का सवाल करूंगा लेकिन जालिम मुझ पे रहम नहीं करेंगे। आजादारो हमारे इमाम हुसैन हमसे चल बसे चले गए, शाम गरीब आने वाली थी, जालिमों ने हुक्म दिया कि खैमों पे वार किया जाए। जैनब को पता है खैमे लूट गए, तमाचे लगाए गए, बीबी की चादरें छीनी गई, थोड़ी सी बात हुई थी, अभी शाम ढलने वाली थी जब जालिम खैमों को छोड़कर चले गए। अब जैनब अकेली तन्हा है, करे तो क्या करे, मक्तल मैदान करबला तरफ गई, माजा ये हुसैन के लाशे पे आई, निया ये चाहा कि हाशा ये हुसैन को खैमे की तरफ ले आए लेकिन वो भी प्यासी थी। लाशाए हुसैन के पास जैनब बैठ गई, अपने दोनों बाजुओं से हुसैन का लाशा उठाने की कोशिश की लेकिन जैनब अकेली कैसे उठा पाती, नहीं उठा पाई, हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, खुदाया हमारी इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। अजादारो अब शाम गरीबा ढलने वाली है, जालिमों ने फकत लूटा ही नहीं, एक मोड़ वो आया कि जालिमों ने फैसला कर लिया कि अब खैमों को आग लगाई जाए। आजादारों ये आग की बात जब आती है, मैंने अभी कहा ना सालों के बाद हम सुनते हैं हम उसका तसव्वुर नहीं कर पाते। आइए सैयद सज्जाद को पूछते हैं, मौला आपके पर जो शामे गरीबा गुजरी वो कैसी थी? आजादारों गौर करिएगा, सैयद सज्जाद ने शामे गरीबा को हमारे सामने ने कैसे पेश किया है। सैयद सज्जाद ने कहा, शामे गरीबा को हम अहले बैत का आलो आयाल ऐसे बिखर गए थे मैदान में जैसे किसी तस्बी के दबाने, जब तस्बी टूटती है तो तस्बी के दाने कैसे बिखर जाते हैं। आजादारों सब बिखरे हुए लोग थे, उसी असना में खैमों में तो आग लगी थी।